0: मौजूद सामिन कराम, अस्सलाम वालेकुम। ये सदाए तुर्की है, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 31 अगस्त बरोज़ पीर है। इस वक्त अंकारा के मकामी वक्त मुताबिक सपहर के 3, पाकिस्तान के वक्त मुताबिक शाम के 5, भारत के वक्त मुताबिक शाम के 5:30 और बांग्लादेश के वक्त मुताबिक शाम के 6 बजे हैं।
1: सामिन, आप हमारे नशात को शॉर्ट वेव 16 मीटर बैंड 17,580 किलोहर्ट्ज़ के अलावा तुर्कसेट 3A ईस्ट और 4A वेस्ट समेत हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं।
0: आज हमारे प्रोग्राम में अलल तरतीब खबरें होंगी, उसके बाद सिलसिलेवार प्रोग्राम देने वाले हाथ की कहानी और अनातोलिया की इब्तदाई तहजीब पेश की जाएंगे।
1: हमारा प्रोग्राम हसब मामूल आंकड़ा के मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे इख्तिताम पजीर होगा। आज आपकी मेज़बान है मिसबा शाही
0: सगीर अहमद
1: और स्टूडियो में हमारे साथ तकनीकी तआवुन कर रहे हैं उसके खुराए।

0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ माशी दबाव मौसर साबित हो रहा है और ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में 28 फरवरी को अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों से शुरू होने वाली जंग के बारे में अपने ख्याल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ईरान की जानिब से अमरीका और इसराइल के हमलों के जवाब में खलीजी खित्ते के ममालिक पर जो जवाबी कार्रवाइयां हुई, खुद समेत हर किस को उस पर हैरत हुई थी, लेकिन ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। ट्रंप ने दावा किया कि तेहरान के खलीजी ममालिक पर हमले इस बात की निशानदेही करते हैं कि अगर उसके पास जौहरी हथियार होते तो वो उन्हें इस्तेमाल कर देता, इससे मशरक वस्ती और इसराइल तबाह हो जाते और यूरोप और अमरीका अगला हदफ बन जाते। उन्होंने कहा कि अगर मैं अमरीका का सदर ना होता तो इसराइल ख़त्म हो चुका होता, मुमकिन है मशरक वस्ती भी ना ही रहता। ट्रंप ने अमरीका के बहरी मुहासरे और ईरान के खिलाफ माशी दबाव को मौसर करार देते हुए दोबारा कहा कि ईरान जवाल पजीर मुल्क है।
2: ईरानी और यूनानी ज़राए इब्लाग के मुताबिक यूनान खित्ते में इसराइली हमलों की वजह से आलमी सतह पर बढ़ती हुई मजम्मत के बावजूद 3 इसराइली फजाई दिफाई निज़ाम खरीदने के लिए 3.6 बिलियन डॉलर के माहदे पर दस्तखत करने की तैयारी कर रहा है। द यरूशलम पोस्ट ने अपनी खबर में कहा है कि तकरीबन 3 साल तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात के बाद

स्वामी लोगों के बगैर शहर क्या है? शेक्सपियर से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शहर लोगों की वजह से होते हैं, ताहम शहरी कार्य की वजह से लोग सालों के दौरान फितरत से दूर हो जाते हैं। जब हम रिहायश गाहें, काम की जगहें, सड़कें कहते हैं तो सब्जाजारों के लिए बहुत कम जगह रह जाती है। जब उनके कुदरती मस्किन उनसे छीन लिए जाते हैं तो बहुत सी जानदार नस्लें शहरों को छोड़कर अपने लिए मुख्तलिफ जगहें तलाश कर लेती हैं। शायद वो वाहिद अनवा जो हम बेघर नहीं कर सकते वो परिंदे हैं। बेशक शहर की ज़िंदगी उन पर भी असरअंदाज होती है, लेकिन वो फिर भी जहाँ चाहें उड़ने और उतरने के लिए आज़ाद हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक़ आसमां से है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब अंधेरा छा जाता है तो परिंदे कहाँ जाते हैं? क्या उनके पास घर भी हैं जहाँ वो महफूज रह सकें? क्या वो दरख्तों की खोखलियों में जाते हैं या अपनी शाखों में छुप जाते हैं? आज हम अनातोलिया में परिंदों के महलात और परिंदों के घरों के बारे में बात करना चाहेंगे जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। बर्ड हाउसेस इंसानों की हमदर्दी के एहसास की सबसे नुमाया मिसालों में से एक हैं। एक नन्ही मखलूक के लिए मखसूस पना गाहें बनाकर उसे खतरा से बचाने के लिए ज़मीर और हमदर्दी के जज्बात के अलावा और कौन सा जज्बा बयान किया जा सकता है? ये मालूम है कि कबूतर के पहले घर 800 साल पहले पत्थरों में तराशे गए थे। तहरीरी ज़राए मेसोपोटामिया में परिंदों के घरों के वजूद का जिक्र करते हैं। बाद में मुख्तलिफ ममालिक और सकाफ़तों में परिंदों के घर नज़र आने लगे हैं। कुछ मुहक्किकीन इन ढांचे के शऊर की आला सतह के इशारे के तौर पर बयान करते हैं। टावर की शक्ल के डोकोर्स हेलेनिस्टिक और रोमन अदवार में बनाए जाते रहे हैं। परिंदों के घर तुर्किस्तान में असलान बाबा के मकबरे, पाकिस्तान में लाहौर का शाही किला, भारत में आगरा फोर्ट, लाल किला और ताजमहल में मिल सकते हैं। लेकिन जिस चीज़ के बारे में हम वाकई बात करना चाहते हैं वो अनातोलियाई सरजमीनों में परिंदों के लिए ख़ास तौर पर बनाए गए ढांचे हैं। जैसा कि हमने अभी जिक्र किया, दुनिया की दूसरी तहजीबें भी परिंदों के लिए घर बनाती रही हैं। ताहम अनातोलिया में परिंदों के घर उनसे मुख्तलिफ हैं। दीगर सकाफतों की तरह ये घर परिंदों के शिकार या फ़ायदा उठाने के लिए नहीं बनाए जाते, ये सिर्फ परिंदों की पनागाह के लिए बनाए जाते हैं, तो उसके करने का मकसद और तरीका भी मुख्तलिफ होता है। बर्ड हाउस उन जगहों के छोटे नमूनों के तौर पर बनाए गए हैं जहाँ लोग इन ज़मीनों में रहते हैं, इसीलिए इसे अक्सर बर्ड हाउस या बर्ड पैलेस भी कहा जाता है। मगरबी सयाह या सफारतकार जो 1900 की दहाई के अवाइल में अनातोलिया आए थे, जानवरों खासतौर पर परिंदों में दिखाए जाने वाले दिलचस्पी से बहुत मुतासर हुए। अपनी याददाश्तों में इतालवी मुसनफ़ एडमोंडो अमेसिस बताता है कि इस्तांबुल में सुल्तानों और अफराद के जरिए लातादात कबूतरों को खाना खिलाया जाता था और यह कि तुर्क परिंदों की हिफाजत भी की जाती थी। जर्मन मार्शल हेलमेट वोन मोल्टके ने उस्कुदार में बिल्लियों के लिए मुख्तस एक बिल्ली हस्पताल और बायजीद में कबूतरों के लिए एक जगह का जिक्र किया है। फ्रांसीसी सयाह जां दी थिविनोट हैरत और तारीफ के साथ लिखते हैं कि बहुत से लोग बाजारों में जाते हैं और परिंदे खरीद कर आज़ाद कर देते हैं। परिंदों के घर की पहली मिसालें 13वीं सदी में सल्जुक दौर में तामीर की गई इमारतों में पाई जाती हैं। तहरीर ज़राए में सिवास में सिफाई मदरसे का जिक्र पहले ढांचे के तौर पर किया गया है जहाँ परिंदों का घर मिला था। उस्मानी सल्तनत के दौरान मजबूत बुनियादों की रिवायत की बदौलत परिंदों के घर बड़े पैमाने पर बनने लगे और इन ढांचे की शिनाख्त उस दौर के दारुलहुकूमत इस्तांबुल से होती है। महल, मदरसा, मस्जिद, सराय और हमाम, पुल, इबादतगाह, चश्मे, मकानात, मुख्तसर ये कि इंसानों के लिए बनाए गए हर इमारत में बर्ड हाउस मिल सकते हैं। ये घर सामने की तरफ बनाए गए हैं जहाँ परिंदे महफूज महसूस करेंगे और सख्त मौसमी हालात से कम मुतासर होंगे। खिड़कियाँ जो सूरज से जलती नहीं हैं, हवा से नहीं टकराती हैं और सर्दी से भी मुतासिर नहीं होती हैं, इन परिंदों के लिए मखसूस होती थीं। परिंदों के घर उसी तर्ज की खसूसियत को जाहिर करते हैं जिस इमारत पर वो वाक़ हैं और उन्हें तामीराती दस्तावीजात के तौर पर बयान किया जाता है। अनातोलिया के लोग पानी के बर्तन बनाते थे, अगरचे छोटे ही क्यों न हों। जानवरों के पीने के लिए वो इमारतों के एक तरफ बनाते थे और तमाम जानदारों की देखभाल करते थे। ताहम बुरसा में एक ऐसा ढांचा है कि जिस वक्त उसे बनाया गया था उस वक्त ये दुनिया की किसी भी चीज़ के बरअक्स नहीं था।
یہ عمارت جو 19ویں صدی میں سارس کے لیے بنائی گئی تھی، دنیا کے پہلے جانوروں کے ہسپتال کے طور پر جانی جاتی ہے۔ برڈ ہاؤسز جو چھوٹے ماڈل ہاؤسز کی طرح نظر آتے ہیں، عمدہ کاریگری اور جمالیات کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں یہ انسانی ہمدردی کا ایک اشارہ ہے، بدلے میں کسی چیز کی توقع کیے بغیر کسی وجود کی حفاظت کرتا ہے۔ پرندوں کے لیے یہ گھر جو سینکڑوں سال پہلے بنائے گئے تھے، ہمیں ایک الگ ہی دنیا کی یاد دلاتے ہیں جسے ہم آج بھول چکے ہیں۔ یہ دراصل یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم ایکو سینٹرک ہو سکتے ہیں، یعنی ماحول پر مبنی ہو سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ماحول پر مبنی ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے جدید زندگی ہمیں اپنے پرانے فضل سے محروم کرنے اور ہمدردی کے احساس کو مجروح کرنے کا سبب بنتی ہے۔ آج ہم نے اناتولیا میں پرندوں کے گھر اور دنیا کے پہلے سارس ہسپتال کے بارے میں بات کی۔ نسل خان دیر میں جی اولو کے قلم سے تحریر کردہ یہ پروگرام آپ نے سنا۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان صغیر